0: मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे क्राउड की आवाज आनी चाहिए, ऊंचा एक मर्तबा हो जाए ताकि सारी दुनिया सुने, सुनाए सबको।
1: मौला या सल्ल,
0: ये ईमान
1: अबद
0: जिंदाबाद।